दसैंमा सीजी ब्रांड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एंटरटेनमेंट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपया सम्म को बचत। वॉशिंग मशीन में 6 केजी, टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 4 केजी, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोवेव में कुकिंग किट र एसी में निःशुल्क जरा, साथ ही 0% ब्याज में सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपाली को उत्सव दसैं तिहार को एक्सपीरियंस लाइफ विथ सीजी।

0: जय
1: गुरु संपूर्ण मानव चोला को
0: जय
1: जय हो श्री गुरु राधे राधे
2: रेडियो स्पाइनो 89.8 मेगाहर्ज तपाई हाम्रो अटुट स्पाइनो।

को अवसर साथ ही हर एक महीना होने भाग्यशाली पहाड़ में आइडिया को साइड बाई साइड रेफ्रिजरेटर जितने मौका साइड बाई साइड मल्टीडोर रेफ्रिजरेटर कि इंडक्शन निःशुल्क फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में 6 केजी टॉप लोड में 4 केजी सेमी ऑटोमेटिक में 2 केजी सॉफ्ट एक्सेल निःशुल्क डिश वॉशर कि 2 वटा वॉशिंग टैबलेट निःशुल्क आइडिया दस को खुशी घर घर में उपहार।